0: கமல்
1: படுக்கை அறையில் ஆரம்பம் புதிய புதிய இன்பம் चंदा की चांदी में चंदू के चौथरे पे चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई चटनी चटाई किसने चटाई
2: चाचा ने
1: किसको चटाई
2: चाची को
3: अरे पर चाची है कहाँ
1: तो ले आओ ना चाचा

0: ठहरिए, सिकंदर सेठ को तो आने दीजिए।
1: चुप है, इसे भी ले जाओ।
2: इंस्पेक्टर साहब,
0: इंस्पेक्टर साहब, सिकंदर
2: आ गया।
0: थोड़ी देर ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, सिकंदर सेठ को आने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब
3: जरा टहरना।
0: देखो सेठ, बॉल ने कितना नुकसान करवा दिया।
4: गोगा आ गया, डरता क्यों? मैं जो हूँ, और फिर पुलिस भी तो है।
3: क्या बात है इंस्पेक्टर, ये सब माल क्यों उठवाया जा रहा है?
0: ये सब माल स्मगलिंग का है।
3: हाँ हाँ, स्मगलिंग का है। यही नहीं, इस मार्केट में जितना माल है सब स्मगलिंग का है। लेकिन ये स्मगलिंग मैं नहीं करता, ये लोग करते हैं। पुलिस उस माल को पकड़ती है, नीलाम करती है, मैं उसे वहां से खरीद के यहां लाता हूँ।
4: इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है,
1: अपना माल बचाने की कोशिश कर रहा है और क्या।
3: अरे शंभू जरा सीधे लाना।
5: अभी लाया सिकंदर से।
3: ये रही कस्टम ऑफिस की रसीदें इंस्पेक्टर साहब, खुद ही देख लीजिए, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता।